एक शेर तुहाड़ी नजर करदा हजूर। अज दी रात दी खबर दसा, अज दी रात दी खबर दसा, ख्वाब विच सोने आए हुए सन, बड़ी अदा नाल दिता जनाब बोसा, मस्ती विच आज खूब छाए हुए सन, दुख सुख दिया गल्लां खूब होइयां, बड़े अरसे दे दिल घबराए हुए सन, तको तकी अफजल अख खुल गई, जाम कौसर दे लबा नाल।

0: चलो, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है? कभी बिना पानी का समंदर देखा है? रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है? वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
1: ए, क्या लगा रखा है ये सब? क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए। अल्लाह।

इस भजन में यह वर्णन है कि भगवान का नाम लिए बगैर हमारा जीवन अंत में व्यर्थ सिद्ध हो जाता है, और यही समझाने के लिए कुछ बड़े सुंदर उदाहरण दिए हैं जिससे ये बात स्पष्ट होती है, समझ में आती है।

0: कफ्सन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274288252 पर कॉल करें।

0: नफसेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।

0: Okay, listeners, I absolutely love, love, love that song. Hope you guys enjoyed it too. Let's slow it down with this next one.
1: अजीब गल है जी, यादों पे अपना कंट्रोल ही नहीं रहता है। मैंने ओपल याद नहीं जब मैं पैदा होया, मेरी पहली दिवाली या मेरा पहला खाया परौंठा, मैंने याद नहीं। पर दुनिया की सब तो मीठी आवाज जब मैं पहली बार सुनी, वो पल मैनु अज भी याद है। इन्ना सोना चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था जी।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

सतरीकाल एंड वेरी गुड डे। मैं हूं शहनाज मंसूर, एक बार फिर आपसे खिदमत में हाजिर हूं ढेरों दुआओं के साथ। दुआएं हमेशा जो आपको मिलती हैं वो बहुत ही कीमती असासा होती हैं, और मेरे दिल में भी हमेशा आपके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको और आपके प्यारों पर अपनी रहमत का नुजूल हमेशा कायम और दायम रखे, और आप हमेशा खुशियाँ बांटते रहें और खुशियाँ समेटते रहें। आमीन।

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274288252 पर कॉल करें।

आपके मनपसंद गीत और आपकी मनपसंद आवाजों पे मबनी एक बार फिर से खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर आए हैं और इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप आज भी मेरे प्रोग्राम को और इन गीतों को इसी तरह एंजॉय करते हैं जैसे कि हमेशा करते आए हैं और आपका प्यार और आपका साथ हमें आज भी जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक साथ निभाने का।

बाहर का मौसम जैसा भी हो, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने खूबसूरत गीतों के साथ आपके दिल के मौसम को खुशगवार बना सकूं और आपको खुश कर सकूं। और आप जिस मूड में भी हैं, जैसे भी हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरे गीत सुनकर आपका मूड जरूर चेंज हो जाएगा और आप भी खो जाएंगे इस खूबसूरत गीत में और भूल जाएंगे अपने सब कुछ, जो कुछ भी आप कर रहे थे या जो कुछ भी आपके दिल में था, उसे भूल भाल कर आप हमारे गीतों में खो जाएं, ये मुझे यकीन है। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो को 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे आप हमें सुनते हैं पूरी दुनिया में, और इसके अलावा आप हमें डीएबी पे सुनते हैं ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर, लीड्स और ईस्ट लंकाशायर के इलाकों में, और उसके अलावा मिल्टन कीन्स में भी आप हमें सुन पाते हैं। 100.6 एफएम पे आप हमें सुन सकते हैं कालदरडेर के इलाके में और इर्द-गिर्द के इलाके में, और आपके जरिए जो आप डाउनलोड कर सकते हैं आप स्टोर से, उसके आप हमें 2400 घंटे जहां चाहें, जब चाहें, जिस वक्त आपका जी चाहे आप सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन सकते हैं।

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 10 ब्रेडफोर्ड 7230 30।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

लिखा हम मिटा नहीं सकते, अनहोनी को होनी बना नहीं सकते। जमाने में हस्पे आरजू हम किसी को चाह तो सकते हैं मगर पा नहीं सकते। जो रखते हैं दिल के दरीचों को बंद, जो रखते हैं दिल के दरीचों को बंद, वो खुद किसी दिल में समा नहीं सकते। जितना भी इसको तराश कर लो मगर, जितना भी इसको तराश कर लो मगर, पत्थर को हीरा बना नहीं सकते। ये एक हकीकत है कि इश्क और सुकून कभी दिल में एक साथ समा नहीं सकते।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कुल्लो नफ्सिन जायकतुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230-3010, ब्रेडफोर्ड 7230-3010।
3: Sunrise and music. It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

आज का साथ और आज की मुलाकात बहुत खूबसूरत रही, क्योंकि आप हमारे साथी थे, आप हमारे हम सफर थे और आपने इस शो को, इस साथ को, इस मुलाकात को बहुत खूबसूरत बनाया, जिसके लिए मैं आपकी मशकूर ममनून हूँ। रिश्ते सलामत रहे, यादें बाकी रहें तो मिलते रहेंगे सनराइज रेडियो पर। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे को खुदा ताला खैर अफियत अता फरमाए, खुशी नसीब करे। आमीन। खुदा हाफिज़। अल्लाह ने के बान। गुड बाय।

पीने को मैया भूरी गाय का दूध है भूल भूल भूल हाय हाय भूल मैया भूल हाय भूल हुई भूल हुई भूल हुई मैया मांसधारी है फल वाले जा कताई की

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: My favorite radio station, Sunrise Radio.
3: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move

हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 103.2 FM पर और 100.6 FM पर पूरे वेस्ट यॉर्कशायर में सुनाई देती है और डीएबी पे आप ब्रेडफोर्ड कीथले इल्कली स्किप्टन लीड्स हेलिफैक्स मैनचेस्टर ईस्ट लंकाशायर ब्लैकबर्न बर्नले डार्विन नेडसन अक्रिंगटन मिल्टन कीन्स आप सुन सकते हैं और बहुत जल्द आप डाबी में भी सुन पाएंगे अगर आप एप्पल ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर पे आप सुनना चाहें तो भी सुन सकते हैं अगर दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं तो आप हमें वेबसाइट पे सुन सकते हैं www.sunriseradio.fm पर आप कहीं भी हूं वेबसाइट पे आप हमें सुन सकते हैं आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे तो दोस्तों मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक जनाब 2 बजे तक मिले जुले गीत होंगे और आपकी डेडिकेशन होगी तो दोस्तों अब वक्त जो है वो हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है कमर्शियल के बाद आप छोटी सी इवेंट्स डायरी सुनेंगे उसके बाद फिर आपके लिए एक प्यारा सा गीत होगा जो मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम होगा इस उम्मीद के साथ पेश करूंगा कि आप सभी जो हैं उस गीत को एंजॉय करेंगे तो दोस्तों अब वक्त जैसे कि मैंने कहा कि कमर्शियल का हो गया है कमर्शियल के बाद 1 मिनट की जनाब इवेंट्स डायरी आप सुनेंगे उसके बाद गाना और उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है सुनते रहिएगा संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज़ रेडियो के संग

अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब जनाब चलते हैं अगले गीत की जानिब। प्यारा सा गीत है आप प्यारे दोस्तों के लिए। हीरा खान साहब फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, और आपने दोस्तों को सलाम अर्ज़ किया, सबके लिए गीत सुनना चाहा, तो आपके दोस्तों को ये प्यारा सा गीत जो है उनके लिए पेश करता हूँ आपकी जानिब से, और आप सभी सुनने वालों के नाम करता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: कुमार सानू की आवाजों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना आप दोस्तों ने। और दोस्तों अब वक्त हमें बता रहा है कि वक्त हो चुका है जनाब कमर्शियल का, और कमर्शियल पे जाने से पहले टाइम चेक कर लेते हैं जनाब।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 11:44, यानी कि 44 मिनट्स पास्ट 11, तो कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब। कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे एक सदा बाहर पुराना गीत। वाजिद भाई हडर्सफील्ड से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया, आपके नाम करेंगे। हीरा खान साहब आपके नाम करेंगे, तारिक जुल्फी साहब आपके नाम करेंगे, ख्वाजा सरफराज साहब आपके नाम भी करेंगे, और आपके साथ साथ ग़ुलाम भाई आपके नाम भी करेंगे, और आपके साथ साथ जितने और दीगर दोस्त हैं, चौधरी मुजफ्फर साहब हैं और महबूब लाई साहब हैं, चौधरी मनीर साहब चक्की वाले हैं, उनके नाम भी करेंगे और सफीउल्लाह भाई के नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद किशोर कुमार की प्यारी सी आवाज़ में एक प्यारा सा गीत होगा प्यारे दोस्तों के लिए। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते। क्या गीत था, क्या शायरी थी, क्या मौसीकी थी। और जनाब ऐसे गीत जब सुनते हैं तो दिल को कुछ कुछ होता है जनाब, क्या शायरी होती है। और अब एक दो गाना आ रहा है जनाब, ये भी प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। और अब्दुल कय्यूम साहब फ्राइजिंग हॉल से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया जनाब। आपने कहा कि आप अपने तमाम दोस्तों के लिए एक प्यारा सा गीत सुनना चाहते हैं। गीत सभी प्यारे होते हैं जनाब, बस अपनी अपनी पसंद होती है। और जो आप कहते हैं कि आप अपने दोस्तों के लिए गीत सुनना चाहते हैं, तो जो दोस्त इस वक्त सुन रहे हैं अब्दुल कय्यूम साहब के सर आपके नाम किया ये गीत, और आपके साथ साथ इसी गीत को अमजद हकीम भट्टी साहब आपके नाम भी किया, और यही गीत साइमा जी आपके नाम भी किया, और राम भाई यही गीत आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम भी किया। और इस वक्त काफ़ी दोस्त काम कर रहे हैं, मलिक इम्तियाज साहब हैं, इकमाज हैं, मुनीर हैं, वसीम हैं, इमरान हैं, मुजाहिद हैं, अल्लाह दिता, हुमैर, बाबर और इफराज हैं, उनके नाम भी ये गीत करते हैं इस उम्मीद के साथ कि उन्हें भी ये गाना अच्छा लगेगा। तो चलते हैं दोस्तों, और प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी आपके नाम भी करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं दो प्यार भरी आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत। सदाबहार गीत है, यकीनन आप दोस्त एंजॉय करेंगे, तो एंजॉय कीजिएगा। थोड़ा सा स्लो गीत है लेकिन अच्छी सी शायरी के साथ है, उम्मीद रखूँगा आप सभी दोस्त इसको पसंद करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं ये दो प्यार भरी आवाज़ों में प्यारा सा गीत।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है। और दोस्तों प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आप पहुंचे हैं, उम्मीद रखते हैं आप हमारा साथ निभाएंगे। दो बजे तक मेरा और आपका साथ है और साथ में उम्मीद रखते हैं आपने प्रोग्राम का पहला हिस्सा आप पसंद किया होगा। कोशिश होगी इस आवर में आपके लिए अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे गीत पेश किए जाएं। अगर आप कोई गीत सुनना चाहते हैं या किसी गीत के साथ नाम जोड़ना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो की लाइनें खुली हुई हैं, नंबर होगा 01274306666। तो चलते हैं दोस्तों प्रोग्राम के दूसरे हिस्से को शुरू करते हैं इटाव दावर के साथ। और इटाव दावर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं।
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, पंजाबन फिल्म से लिया हुआ गीत आप दोस्तों के लिए पेश किया हिट ऑफ द आवर की शक्ल में। सहरा जी, आपको ये गाना अच्छा लगा, आपके नाम किया। और आने वाला गीत जो पंजाबी का गीत आ रहा है चन्नी सिंह की आवाज़ में, बहुत ही प्यारा गीत है, मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम होगा। लेकिन पहले टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हाँ दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियों के मुताबिक टाइम हुआ है 12:13 से, यानी कि 12:13। और अब जैसा कि मैंने कहा कि कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब, कमर्शियल के बाद चन्नी सिंह की आवाज़ में आप एक पंजाबी का गीत सुनेंगे जो मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों के नाम होगा।

0: ओ नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।

नसरीन साहबा फोन करने का शुक्रिया। आपके नाम भी थोड़ी देर के बाद गीत करते हैं, फिलहाल आने वाले गीत से दिल बहलाइएगा।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना बाबू मन की प्यारी सी आवाज में। मुदस्सर कियानी साहब, आपने फोन किया, शुक्रिया। आपने कहा आपको ये गाना बहुत अच्छा लगता है, जब भी सुनते हैं आप बहुत एंजॉय करते हैं, तो आपके नाम किया जनाब। आपने कहा कि आप तमाम दोस्तों के लिए एक प्यारा सा गीत सुनना चाहते हैं, मजीद गीत सुनने चाहते हैं, आपका जी भर नहीं रहा जनाब। तो सभी गाने जो प्रोग्राम के होंगे जनाब, मुदस्सर कियानी साहब आपके नाम होंगे, आपकी जन्म से सब सुनने वालों के नाम होंगे। तो कमर्शियल का टाइम हो गया है, कमर्शियल के बाद जो गीत होगा आपकी जन्म से दोस्तों के नाम होगा। और मैंने कभी ये गाना लगाया नहीं, पहले ऐसे ही छोड़ देता था, आज सोचा चलिए यार इसको भी लगा देते हैं। उम्मीद रखता हूँ आप पसंद करेंगे। नसरीन सवा, शुक्रिया फ़ोन करने का। आप आसमां के लिए गीत सुनना चाहती हैं तो आपके नाम भी करेंगे। और चौधरी मुजफ्फर साहब, फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपके दोस्तों के नाम भी करेंगे बाद में लिस्ट में, जो आपके दोस्त हैं ज़रूर उनके नाम भी करेंगे। आप हमेशा बड़े प्यार से, खलूस से, मोहब्बत से प्रोग्राम में शमूलियत करते हैं और जनाब सुनते हैं आप प्रोग्राम को, और अपने दोस्तों के लिए हमेशा प्यारे प्यारे गीत पेश करने की कोशिश भी करते हैं। तो जनाब आपके दोस्तों के नाम होगा गीत, और जो आप जो है ना आज छुट्टी पे हैं, घर में आराम से सुकून से आप जनाब रेडियो को सुन रहे हैं और साथ में जनाब छुट्टी भी अपनी बना रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों के लिए, चलिए आपके दोस्तों के नाम ले ही देता हूँ, आपके दोस्तों के नाम जिन्हें आप गीत जिनके लिए सुनना चाहते हैं, उनमें चौधरी आसिफ रियासत साहब, चौधरी फरियाद साहब, परवेज साहब, अपने खान महबूब लाई साहब, तारिक जुल्फी साहब, जावेद मीर भाई, तारिक भट्ट साहब, शकील भाई, हीरा साहब, चौधरी मोहम्मद उस्मान साहब, सफीउल्ला भाई, वाजिद भाई अडसफीर वाले, अयूब चौहान साहब, चौधरी मुनीर साहब चक्की वाले, शरफद्दीन साहब, पापा ख्वाजा शफीक साहब और सलीम साहब, अतीका साहिबा और जंगीर भाई ड्यूसबरी वाले, उनके नाम भी आप सुनना चाहते हैं तो जनाब आपके दोस्तों के नाम करते हैं। जनाब शुक्रिया आपका, आप जनाब प्रोग्राम में बड़े प्यार से, खलूस से, मोहब्बत से शामिल होते हैं। और इसी गीत को जनाब नज़र करना चाहेंगे अपने गुलाम भाई आपकी जानिब से, आपके स्टाफ के नाम, और इसी गीत को सभी सुनने वालों के नाम करूंगा। तो चलते हैं, और मुना जी ये गीत आपके नाम भी।
1: थैंक यू फॉर मेकिंग सनराइज रेडियो योर फेवरेट एशियन रेडियो स्टेशन।
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ, जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे, जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
3: You're listening to Sunrise Radio.

जी दोस्तों, अभी आपने दो प्यार भरी आवाजों में विपुल साई देवा और अनुराधा पंडवाल की आवाजों में आपने प्यारा सा गीत सुना। ये गाना कभी नहीं लगाया और अब एक और गीत ऐसा प्ले करने जा रहा हूँ, मेरे ख्याल में कभी इसको भी नहीं चलाया, तो आज चला देते हैं। गुलाम भाई, फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आने वाला गीत जो है ये कभी चलाया नहीं, आज चला रहा हूँ। आपके नाम करूँगा, आपकी जन्म से आपके स्टाफ के नाम करूँगा। एक बार फिर गुलाम भाई, फ़ोन करने का शुक्रिया, अपनी प्यारी सी आवाज़ से नवाजने का शुक्रिया। और मुदस्सर के अनिसा चौधरी, मुजफ्फर साहब, अब्दुल कयूम साहब, राइजिंग हॉल वाले और जनाब हीरा खान साहब और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करूंगा। और प्यारी बेना सादिया जी, आपके नाम, आजरा जी आपके नाम, और इसी गीत को अमरीन साहब आपके नाम भी करूंगा। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को और इन्जॉय करते हैं। और साथ में ही जनाब आप जो है ना सुन रहे हैं इस वक्त बाबर शॉप पे तीन शहजादे जनाब बशारत अली, सिकंदर अली, आरिफ अली, उनके नाम भी करेंगे और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे। महमूद भाई, आपने आप भी मिस कॉल दे रहे हैं जनाब, आपके नाम भी करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं आशा भोसले और नितिन मुकेश की प्यारी सी आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के नाम। और सोबत भाई रीड से आपने भी जनाब मिस कॉल दी, आपके नाम भी करते हैं जनाब। शहजादों के नाम तो मैं कर ही चुका हूं, सोबत भाई आपके नाम भी करता हूं जनाब।

0: जी दोस्तों अभी आपने आशा भोसले और जनाब नितिन मुकेश की आवाजों में प्यारा सा गीत सुना दोस्तों। अब वक्त हमें बता रहा है कि टाइम चेक का टाइम हो गया है जनाब, और टाइम चेक करते हैं और साथ में प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जनाब। तो चलते हैं टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 12:46, यानी कि 46 मिनट्स पास्ट जनाब 12, और इसका मतलब ये हुआ कि कमर्शियल का टाइम भी हो गया है जनाब, और कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे एक प्यारा सा सदाबहार पुराना गीत। वो नज़र करना चाहेंगे जनाब तारिक जुल्फी साहब, आप भी फ़ोन कर रहे थे जनाब, आप अपने दोस्तों के लिए स्पेशली जनाब मलिक इसहाक साहब के लिए आप गीत सुनना चाहते हैं, और उसके बाद शबीर भाई इस्लामगढ़ वाले आपने भी मिस कॉल दी जनाब, आपके नाम भी करते हैं, और उसके बाद हमारे प्यारे दोस्त चौधरी मनीर साहब चक्की वाले वो भी मिस कॉल दे रहे हैं, उनके नाम आगे भी 2-3 गीत कर चुका हूं मैं, और ये गीत भी उनके नाम करूंगा, और उसके बाद जनाब चौधरी फरियाद साहब पाकिस्तान से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया जनाब फ़ोन करने का, और आपके नाम भी करते हैं जनाब, और आपकी जानिब से आपके दोस्तों के नाम भी करते हैं, और उसके बाद ग़ुलाम भाई आपके नाम भी करते हैं, और आपके साथ साथ सफ़ीउल्लाह भाई के नाम भी करते हैं, चौधरी मुजफ़्फ़र साहब के नाम करते हैं, सोबत भाई रीड्स में उनके नाम भी करते हैं, महमूद भाई के नाम भी करते हैं, मुदस्सर कियानी साहब के नाम भी करते हैं, अब्दुल क़य्यूम साहब राइजिंग हॉल वाले उनके नाम भी, हीरा खान भी, ख्वाजा सरफराज साहब के नाम भी, और जनाब इसके साथ साथ बाबर शाह पे 3 शहजादे काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरिफ अली, वो भी सुन रहे हैं, दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे, और सभी सुनने वालों के नाम करेंगे जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानिब, कमर्शियल के बाद गीत होगा जनाब, गीत के बाद आप सभी से मिलते हैं।
2: Looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
3: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
4: Kullu nafsin zaiqatul maut.
5: Muslim funeral service mein kafan, dafan, phoolon ka intizam Islami shariat ke ain mutabik ghusl-e-mayyit ke liye aurat aur mard maujood hain. Top quality granite marble ke headstones aur full cover ko 30 saal ki guarantee ke saath banwane ke liye bhi Muslim

जी दोस्तों, अभी आपने लता जी और किशोर कुमार की बहुत ही प्यारी सुरीली आवाजों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और दोस्तों अब क्योंकि टाइम बड़े नाजुक मोड़ पे आ गया है और गाना भी हमें छोटा सा चाहिए क्योंकि खबरों का वक्त जो है बहुत करीब है। 3 मिनट और कुछ सेकंड्स बचते हैं जनाब खबरों के आने में, बल्कि बिल्कुल 3 मिनट्स और कुछ सेकंड्स हैं। और जो गाना मैं आपको प्ले करने जा रहा हूं आपके लिए, वो लता जी का गाना ऐसा गाना है जो दिल के तारों को छू लेता है। मज़े की बात यह है कि वो 3 मिनट का गाना भी नहीं है, 3 मिनट से भी 12 मिनट कम सेकंड्स कम में, यानी कि 2 मिनट्स और 48 सेकंड का गाना है। लेकिन क्या गाना है जनाब, सुने तो सुकून आ जाता है, दिल के तारों को छूता है और एक एक बोल जो है ना वो दिल के तारों को हिला के रख देता है। ये वही समझ सकते हैं जो प्यार करने वाले हैं। तो सुनिएगा इस गाने को और इंजॉय कीजिएगा।

0: दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। दोस्तों आप हमें 103.2 FM पर और 100.6 FM पर पूरे वेस्ट यॉर्कशायर में सुन रहे हैं और DAB पे आप हमें ब्रेडफोर्ड में, कीतले में, इल्कली में, स्किप्टन में, लीड्स, हलीफैक्स, मैनचेस्टर में, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्ले, डार्वन में, नेल्सन, अकरिंगटन, मिल्टन कीन्स में आप हमें सुन रहे हैं जनाब, और बहुत जल्द ढाबी में भी आप हमें सुन पाएंगे। अगर आप एप्पल स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पे सुनना चाहें तो भी आप सुन सकते हैं, और दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं और सनराइज रेडियो को सुन रहे हैं तो जनाब आप हमें www.sunriseradio.fm पर दुनिया के किसी कोने में भी आप बैठ के सुन सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में शामिल हो चुके हैं। टाइम बड़ा जल्दी जाता है जनाब, खासकर जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता। यूं महसूस होता है कि अभी प्रोग्राम करने आए हैं और ये कैसे हो सकता है तीसरा घंटा जो है वो शुरू हो चुका है, प्रोग्राम का आखिरी आवर शुरू हो चुका है। एनीवे दोस्तों, अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहें, कोई गीत सुनना चाहें तो आपके लिए लाइनें खुली हैं। नंबर होगा 01274-306666। तो चलते हैं दोस्तों प्रोग्राम के जनाब तीसरे और आखिरी हिस्से को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ, और हिट ऑफ द आवर का गीत नुसरत फतेह अली खां और साथियों की आवाज़ों में आप दोस्तों के लिए पेश करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप सभी इंजॉय करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं नुसरत फतेह अली खां और साथियों की आवाज़ों में ये पंजाबी का प्यारा सा गीत हिट ऑफ द आवर की शक्ल में। तारिक भाई आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। आपके नाम करेंगे चौधरी मनीष साहब चक्की वाले, आपके नाम करेंगे तारिक जुल्फी साहब, आप भी सुन रहे हैं और दो बार आपने फ़ोन किया, दो बार आपसे बात नहीं हो पाई। मैं ऑन एयर बात कर रहा होता था तो आपकी कॉल आती थी, और उसके बाद शबीर भाई इस्लामगढ़ वाले, आपसे भी बात नहीं हुई लेकिन पता चल गया आपने मिस कॉल दी, आप सुन रहे हैं तो आपके नाम किया। और ये पंजाबी का गीत हमारे प्यारे दोस्त चौधरी फिलयाज साहब जो हैं वो हमेशा पंजाबी का गीत पसंद करते हैं, तो आपने दोस्तों के नाम हमेशा पंजाबी के गीत का ही कहते हैं, तो ये पंजाबी का गीत है, चौधरी फिलयाज साहब के दोस्तों के नाम होगा। और इसी गीत को साइमा जी आपके नाम करेंगे, सोबत भाई लीड से आपके नाम करेंगे, महमूद भाई आपके नाम करेंगे, गुलाम भाई आपकी जानब से आपके स्टाफ के नाम करेंगे, और नसरीन साहब आपके नाम भी करेंगे, चौधरी मुजफ्फर साहब आपके नाम भी करेंगे, और आपके साथ साथ जनाब इसी गीत को मलिक इम्तियाज साहब, आपकी पूरी टीम इकमाज, मनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह दिता, उमेर, बाबर और इफराज के नाम भी करेंगे। और इस वक्त सहेलियाँ काम कर रही हैं, नजमा, इफ़त, नाजिया, हमीदा, रुबीना, बुशरा, इकरा, ताजीम, जायदा और साइमा आपके नाम भी करेंगे, और प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खां और साथियों की आवाज़ों में ये बहुत ही प्यारा सा पंजाबी का गीत आप सभी सुनने वालों के नाम।
1: Hit of the Hour, brought to you in association with National Property Lawyers. One trusted team for your property and legal needs. Call 01274 559 565.

0: जी दोस्तों, अभी आपने नुसरत फतेह अली खां और साथियों की आवाज़ों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना पंजाबी में, और इसके साथ ही जनाब वक्त बताते हैं आपको कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो क्या बता रही हैं। तो चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं इस वक्त 1:16 हुआ चाहते हैं, यानी कि 1:16। तो इसका मतलब ये हुआ कि कमर्शियल का टाइम हो गया है। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा, वो गीत होगा सहमा जी आपके नाम होगा, प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी आपके नाम होगा, गुलाम भाई आपकी जानिब से आपके पूरे स्टाफ के नाम होगा। और ये गाना भी कभी मैंने चलाया नहीं, अभी आज वैसे गाने चला रहा हूँ कुछ जो मैं कभी चलाए नहीं। तो चलते हैं, सुनते हैं जनाब।
2: महंगाई, चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dockworth Lane, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
3: Looking for your dream home in Bradford?
4: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
3: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
4: Bellevue Residences.
3: Luxury, space and style.
4: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। यकीनन आप दोस्तों ने इस गीत को पसंद किया होगा। अब आपको क्या सुनाऊं, कोई समझ नहीं आ रही। चलते हैं, एक कोई ऐसा प्यारा सा गीत ढूंढते हैं जो आप दोस्तों के लिए पेश करें। और अब हमें मोहम्मद बशारत भाई, बड़े दिनों के बाद आपकी प्यारी मीठी आवाज़ सुनी, बहुत अच्छा लगा अपने भाई से बात करके। और अब जो गीत पेश करने जा रहा हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। अच्छा सा गीत है, अलका याग्निक की प्यारी सी आवाज़ है। आप सभी सुनने वालों के नाम करूँगा जो इस वक्त सन रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। और मलिक इम्तियाज़ साहब, आप भी मिस कॉल दे रहे हैं, आपके पूरे स्टाफ के नाम भी, आप जितने दोस्त आपके साथ काम कर रहे हैं सब के नाम भी करेंगे। तो चलते हैं अलका याग्निक की आवाज़ में, ये बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: जी दोस्तों, अभी आपने उदर नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब जनाब वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है। कमर्शियल के बाद एक बहुत ही प्यारा गीत होगा अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में, और वो गीत होगा मलिक इम्तियाज साहब। आपने फोन किया, शुक्रिया। आप इकमाज, मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह दिता, उमेर, बाबर और इफराज के लिए सुनना चाहते हैं, और इसी गीत को नजमा साहबा आपके साथ इफ़त, नाजिया, उमीदा, रुबीना, बुशरा, इकरा, ताजीम, जायदा और साइमा भी हैं, उनके नाम भी करते हैं, और प्यारी बहना सादिया जी, अजरा जी आपके नाम भी करते हैं, और साइमा जी आपके नाम भी करते हैं, गुलाम भाई आपकी जानब से आपके स्टाफ के नाम भी करते हैं, मोहम्मद बशारत भाई, तारिक भाई और चौधरी मनीर साहब चक्की वाले जनाब, और तारिक जुल्फी साहब, एक बार फिर आपने कहा कि आप प्यारा सा गीत दोस्तों के लिए सुनना चाहते हैं और स्पेशली मलिक इसहाक साहब के लिए सुनना चाहते हैं, तो उनके नाम भी करते हैं। और उसके बाद शबीर भाई इस्लामगढ़ वाले और चौधरी फिलहाल साहब, सोबत भाई नीर्स वाले और मुदसर क्यानी साहब, आसम भाई ओल्डम में, और चौधरी मुजफ्फर साहब के अलावा ईरा खान साहब और ख्वाजा सरफराज साहब और जनाब हमारे जनाब नदीम मंसूर साहब हैं उनके नाम भी, और जनाब भाई चौधरी रुखसार अहमद साहब मैनचेस्टर में उनके नाम भी, और आसिम भाई हैं ओल्डम में उनके नाम भी, और तीन शहजादे बाबर शाह पे काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली, उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है, सुनते रहिएगा।
1: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
2: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.

0: जी दोस्तों, अभी आपने अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। यकीनन आप सभी दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब जनाब वक्त हमें बता रहा है कि कोई गीत नहीं होगा, क्योंकि वक्त जोहर की अजान का हो चुका है। तो जोहर की अजान सुनेंगे, उसके बाद ही प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मेरा और आपका साथ अब इतनी देर का नहीं रह गया, तकरीबन 20 मिनटों का मेरा और आपका साथ है, जिसमें आप जोहर की अजान भी सुनेंगे और फिर कमर्शियल भी सुनेंगे। तो फिर भी पीछे तो क्या रह जाता है, थोड़ा सा टाइम रह जाता है जनाब। जैसा कि प्रोग्राम जब शुरू करते हैं तो सोचते हैं कि 3 घंटों का ये बड़ा लंबा सफ़र होगा, तो जनाब अब थोड़ी थकान हो जाएगी। ये सोच सोच के 3 घंटों का प्रोग्राम है जनाब, बड़ा लंबा प्रोग्राम है। क्या क्या गाने लगाएंगे। फिर जब प्रोग्राम शुरू करते हैं तो आप दोस्तों का इतना प्यारा साथ होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि टाइम कैसे गुजर गया है। तो थोड़ा सा फिर लालसा होने लगता है कि जनाब कि टाइम हो गया जनाब, पूरे 3 घंटे हो गए तो पता भी नहीं चला। तो फिर कल की उम्मीद पे फिर जाते हैं, और फिर किस्मत अगर साथ देती है, ज़िंदगी वफा करती है, तो दूसरे दिन फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं और फिर यही चक्कर चलता रहता है। तो चलते हैं जनाब, आप सुनते हैं जोहर की अजान, उसके बाद दोस्तों मिलते हैं। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग।
1: ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो सोचा चलिए आज मैं भी इसको सुनने का मन कर रहा था, तो सोचा आप सभी सुनने वालों के नाम भी कर दूं। तो जनाब मुकेश की आवाज़ में ये गीत है और इस गीत को नज़र करना चाहूँगा मलक इम्तियाज़ साहब, आपकी पूरी टीम के नाम, मोहम्मद बशारत भाई, तारिक भाई, चौधरी मनीर साहब चक्की वाले, महबूब अलाई साहब और अमजद हकीम भट्टी साहब, तारिक जुल्फी साहब, शबीर भाई इस्लामगढ़ वाले और सोबत भाई लीड से, चौधरी फरियाद साहब पाकिस्तान कश्मीर जुड़े में सुन रहे हैं, उनके नाम भी महमूद भाई और ग़ुलाम भाई आपके नाम भी, और मदसर कियानी साहब, चौधरी मुजफ्फर साहब, अब्दुल क्यूम साहब फ़राज़ जंगौल वाले, हीरा ख़ान साहब, ख्वाजा सरफराज साहब और जनाब सफ़ीउल्ला भाई और दीगर दोस्त जो इस वक्त सुन रहे हैं सन्ना रेडियो की निशरात को, तीन शहज़ादे बाबर शाह पे काम कर रहे हैं, उनके नाम भी ओहो भूल गए, हमारे प्यारे जनाब जफर इकबाल साहब हमारे ब्रेफर मोर के काउंसलर जनाब, उन्होंने भी तमाम सुनने वालों को सलाम भेजा, सब के लिए गीत सुनना चाहा, ख़ासकर अपने दोस्तों के लिए और जो उनके वेल विशवर हैं उनके नाम भी वो गीत करवाना चाहते हैं। तो जनाब जफर इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, और आपने गीत सुनना चाहा सभी सुनने वालों के लिए भी, तो उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं जनाब, टाइम चेक कर लेते हैं,
1: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:46 से, यानी कि 46 पास्ट वन। तो जनाब इसके साथ ही चलेंगे कमर्शियल की जानिब, कमर्शियल के बाद मुकेश की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनेंगे, तो जनाब इन्जॉय कीजिएगा उस गीत को। तो चलते हैं सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है जनाब, सुनते रहिएगा, 2 तक मेरा और आपका साथ है।
2: My favorite radio station, Sunrise Radio.
3: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move via the Sunrise smartphone app.
4: We love Sunrise Radio.
5: The greatest station, radio station in the world.
6: Sunrise Radio.
7: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है, महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेज, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
8: 24 hours a day, 103.2. This is Sunrise Radio.
5: Got the greatest station, radio station in the world.
4: Sunrise Radio.
9: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

मुकेश की आवाज में दोस्तों आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। हीरा साहब आपने फोन किया, आपको ये गाना बहुत अच्छा लगा, आपके नाम तो किया था जनाब। और दोस्तों इसी के साथ ही मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है इख्तिताम पजीर हुआ जाता है। उम्मीद रखता हूँ आज का प्रोग्राम आप दोस्तों ने पसंद किया होगा। साथ निभाने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अब आमिर शहजाद को इजाजत दीजिएगा, अगर अल्लाह ने चाहा और जिंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात कल सुबह 11:30 बजे होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह निगबान।

खूबसूरत से गाने के बाद आपका स्वागत है इस शो पर. वेलकम टू द शो, वेलकम बैक आफ्टर द हिट ऑफ द आवर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम. आप सुन रहे हैं राइट नाउ. गुड आफ्टरनून टू यू. मेरा नाम है एबी और आज 2 से 5 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. जी हाँ, काफी सारे ब्यूटीफुल रोमांटिक वाले सॉन्ग्स मैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए स्पेशली डेडिकेट करने वाला हूँ. सो मेरा साथ दीजिएगा, मेरे साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा. स्टे ट्यून्ड.

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, ब्रेडफोर्ड 7230300।
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274288252 पर कॉल करें।

dear, welcome back after yet another beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. Well, Sunrise Radio सुनने के काफी सारे तरीके हैं. First of all, आप सुन सकते हैं Sunrise Radio 103.2 FM जो हमारी frequency है. At the same time, app के द्वारा भी आप सुन सकते हैं. At the same time, हमारा app है ना, so दुनिया के किसी भी कोने में आप हमें सुन सकते हैं. All you have to do is download our app. Google नहीं तो App Store पे मिल जाएगा. Absolutely free. Also, हमारी website है www.sunriseradio.fm. Log on कीजिएगा. सारी अपडेट्स, अपकमिंग इवेंट्स आप वहां पे देख सकते हैं. एट द सेम टाइम हमारे रेडियो का लाइव स्ट्रीमिंग भी आप कर सकते हैं. एंड ऑन दैट नोट, अगला ब्यूटीफुल गाना सिर्फ आपके लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ.

वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल क्लासिक फ्लैशबैक ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मैं आशा करता हूँ कि इस गाने से जुड़ी काफी सारी यादें ताजी हुई होगी। वेल राइट नाउ मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, विच इज आफ्टर द न्यूज, और तब भी इन ब्यूटीफुल गानों का सिलसिला चलता रहेगा। सो डोंट गो एनीवेयर, आई विल सी यू ऑन द अदर साइड।

जी हाँ, इस ब्यूटीफुल हिट ऑफ द आवर के बाद आपका स्वागत है सनराइज रेडियो 103.2 एफएम, आप सुन रहे हैं राइट नाउ। वेलकम टू द शो, मेरा नाम है अभी और आज मैं रहूंगा आपके साथ विद सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। मिलते हैं अगले गाने के बाद।

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230 30 10 ब्रेडफोर्ड 7230 30।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

जी हाँ, वंस अगेन वेलकम बैक टू द शो सनराइज रेडियो 103.2 एफएम और वेलकम बैक आफ्टर दिस येट अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग। मेरा नाम है एबी और आज मैं आपके साथ रहूंगा 5 बजे तक। जी, अगला गाना जो है आपके लिए स्पेशली मैंने सेलेक्ट किया है, एंजॉय कीजिएगा।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

वेलकम बैक आफ्टर दिस येट अनदर ब्यूटीफुल क्लासिक फ्लैशबैक ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है एबी और आज 2 बजे से मैं आपके साथ था। बट राइट नाउ इट्स टाइम टू गो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, योर लव्ड वंस एंड गुड बाय।

या इस ब्यूटीफुल हिट ऑफ द आवर के बाद आपका स्वागत है सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ. वेलकम टू द शो. मेरा नाम है अभी और आज मैं रहूंगा आपके साथ विद सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. सो स्टे ट्यून्ड विद मी. मिलते हैं अगले गाने के बाद.

नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन हैं, महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेज, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274288252 पर कॉल करें।

Once again, welcome back after yet another beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. Well, Sunrise Radio सुनने के काफी सारे तरीके हैं. First of all, आप सुन सकते हैं Sunrise Radio 103.2 FM जो हमारी frequency है. At the same time, app के द्वारा भी आप सुन सकते हैं Manchester और Glasgow में. At the same time, हमारा app है ना, so दुनिया के किसी भी कोने में आप हमें सुन सकते हैं. All you have to do is download our app. Google नहीं तो App Store पे मिल जाएगा. Absolutely free. Also, हमारी website है www.sunriseradio.fm. Log on कीजिएगा. सारी अपडेट्स, अपकमिंग इवेंट्स आप वहां पे देख सकते हैं. एट द सेम टाइम हमारे रेडियो का लाइव स्ट्रीमिंग भी आप कर सकते हैं. एंड ऑन दैट नोट, अगला ब्यूटीफुल गाना सिर्फ आपके लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ.

वेलकम बैक आफ्टर दिस येट अनदर ब्यूटीफुल क्लासिक फ्लैशबैक ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है एबी और आज 2 बजे से मैं आपके साथ था। बट राइट नाउ इट्स टाइम टू गो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, योर लव्ड वंस एंड गुड बाय।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: Looking ahead to the weekend, here's what's happening across Yorkshire and beyond. First in Bradford, Miss Saigon is at the Alhambra Theatre, with performances running until Saturday 9th May. Also in Bradford, Jim Moyer Neo Fauna continues at Cartwright Hall, running through to the 31st August. Over in Calderdale, Frankie's Guy's 10th anniversary tour comes to the Victoria Theatre in Halifax on Friday 8th May. Also in Halifax, Fur and Feathers continues at Dean Clough, running until 27th May. In Leeds, I, Daniel Blake continues at Leeds Playhouse until Saturday 9th May. In Manchester, Bank of Dave the Musical is at the Lowry in Salford, running until Saturday 16th May. Over in East Lancashire, Ian McNabb is live at Darwin Library Theatre on Friday 8th May. And finally in Milton Keynes, Sing Alonger, The Greatest Showman is at Milton Keynes Theatre on Saturday 9th May. And that's your Sunrise Radio event diary.

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-21-21 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014। सोफी ज्वेलर्स।
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: Looking ahead to the weekend, here's what's happening across Yorkshire and beyond. First in Bradford, Miss Saigon is at the Alhambra Theatre, with performances running until Saturday 9th May. Also in Bradford, Jim Moyer Neo Fauna continues at Cartwright Hall, running through to the 31st August. Over in Calderdale, Frankie's Guy's 10th anniversary tour comes to the Victoria Theatre in Halifax on Friday 8th May. Also in Halifax, Fur and Feathers continues at Dean Clough, running until 27th May. In Leeds, I, Daniel Blake continues at Leeds Playhouse until Saturday 9th May. In Manchester, Bank of Dave the Musical is at the Lowry in Salford, running until Saturday 16th May. Over in East Lancashire, Ian McNabb is live at Darwen Library Theatre on Friday 8th May. And finally in Milton Keynes, Sing Alonger, The Greatest Showman is at Milton Keynes Theatre on Saturday 9th May. And that's your Sunrise Radio event diary.

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: 24 hours a day. It's a classic hit. Flashback, flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

जिद है तो अभी सब कुछ बताता हूँ। मैं कितना खानदानी हूँ, झलक झलक इसकी दिखाता हूँ।

अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।